मुआशरा और करेंसी रेट्स। पल पल की खबर हर पल, आपकी पहचान आपकी जबान, आपकी आवाज, वॉइस ऑफ नॉर्वे।

0: आइए प्रोग्राम की इब्तिदा करते हैं।
1: ये तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है।

से आन पड़ा है। पूरी पाकिस्तानी कौम अपने ईमान और मुनसफाना हक के लिए आखिरी सांस तक लड़ेगी। सामने भारतीय हुकूमत वादों मुआवजों और आलमी करारदादों के बावजूद कश्मीर के मसले को इल्तवा में डालती रही। पाक फौज ने फौजी ताकत से अपने हक हासिल करने की कोशिश की। भारत ने आलमी असूलों की परवाह न करते हुए पाकिस्तान पर हमला कर दिया। सामिन 6 सितंबर के साथ कई खुशगवार यादें भी वाबस्ता हैं। पाकिस्तान के शायरों ने कौमी नगमे तहरीर किए और गुलकारों ने उन्हें मौसीकी और आवाज़ में ढालकर पूरी कौम में वलवला पैदा कर दिया। मलका तरन्नम नूर जहां और दूसरे गुलकारों और मौसीकारों के नगमों और गीतों ने पूरी कौम और पाक फौज के जवानों में एक नया वलवला पैदा कर दिया। ये कौमी नगमे और गीत आज भी कौम में जज्बा और वलवला पैदा करते हैं।

6 सितंबर हमारी अस्करी तारीख का इंतहाई अहम दिन है। ये दिन हमें चंग सितंबर के उन दिनों की याद दिलाता है जब पाकिस्तान की मुसल्ह अफवाज और पूरी कौम ने भारतीय जारहीत के खिलाफ अपनी आज़ादी और कौमी वक़ार का दिफा किया था। उस दिन बहादुर पाकिस्तानी शहरियों ने अपनी मुसल्ह अफवाज के साथ यकजहती का बेमिसाल मुजाहरा किया और यह जंग पाकिस्तानी और मुसल्ह अफवाज की वो मुश्तरक जद्दोजहद थी जो आने वाली नस्लों के लिए मशअल राह का काम करती रहेगी। 6 सितंबर 1965 की सुबह भारत अचानक पाकिस्तान पर हमला आवर हुआ। उसका इरादा था कि वो सुबह का नाश्ता लाहौर के जिमखाना में करेगा। दर हकीकत 6 सितंबर हमारी कौमी तारीख में संग मील की हैसियत रखता है। 6 सितंबर की याद मनाते हुए जब हमारा जहन उस तारीखी मार्का की वर्क गर्दानी करने लगता है तो हम देखते हैं कि किस तरह हमारे बुजदिल मक्कार और अय्यार दुश्मन ने अपनी रवायती बुजदली का मुजाहरा करते हुए रात की तारीखी में हमारे वतन अजीज पर हमला कर दिया था। हमारे बेदार और जिंदा कौम ने इस मौका पर कौमी यकजहती का बेमिसाल मुजाहरा करके दुश्मन के नापाक अजायम को खाक में मिला दिया। भारतीय सियासी क़यादत ने कश्मीर हाथ से जाता देखा तो अपनी फौज पर दबाव ख़त्म करने के लिए बग़ैर ऐलान जंग के कश्मीर के जनूबी महाज पर पाकिस्तानी बैन अल-अक़वामी सरहद को अबूर करते हुए लाहौर पर पूरी कुव्वत से हमला कर दिया। भारतीय मनसूबा, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, था कि सुबह का नाश्ता लाहौर में आकर जिम करना है और जिमखाने क्लब में शराब पीना शामिल था। जब हमला हुआ तो पाकिस्तानी फौज और रेंजर्स ने पूरी हिम्मत और जवान मर्दी के साथ दुश्मन का मुकाबला शुरू कर दिया। फौजी जवानों और अफसरों ने अपनी जानें कुर्बान करके दुश्मन के कदम वहीं रोक दिए।

का जो हाल, जीटी रोड लाहौर की तरफ मार्च करते हुए बाटापुर के सामने हिंदुस्तानी 15 डिवीजन का हुआ, वो तारीख का हिस्सा है। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने फौरी तौर पर एक्शन करते हुए दुश्मन की गाड़ियों और सिपाह पर हमला किया तो वो जीटी रोड पर अपनी लाशें और स्टार्ट गाड़ियां छोड़कर भाग गए। हर तरफ तबाहशुदा गाड़ियां और स्क्रैप नज़र आ रहा था। पाक फिजाइया ने इतना शदीद हमला किया था कि उनको सड़क छोड़कर किसी पनाहगाह तक पहुंचने का रास्ता नहीं मिल रहा था। इसी दौरान पाकिस्तानी फौज ने खुद को संभाल कर इतनी बड़क रफ्तारी से जवाबी हमला किया कि भारतीय फौज के औसान खता हो गए। लाहौर के मार्के में ही बरकी के अहम मुकाम पर हिंदुस्तानी फौज ने सख्त दबाव डालकर वहां से नहर पार करने की कोशिश की थी, लेकिन मेजर अजीज भट्टी निशान हैदर की कंपनी ने उन्हें बारूद के शोलों में घेर लिया। मेजर अजीज भट्टी दम लिए बगैर लड़ते रहे, हत्ता के टैंक का एक गोला लगने से शहीद हो गए।

भारत अखनूर से जम गुजरात फिरोजपुर कंडा सिंह लाहौर अमृतसर भाटापुर लाहौर खरला बरकी और लाहौर के रास्तों से हमला आवर हुआ। लाहौर पर कब्जा करने का ख्वाब ड्रोन ख्वाब में तब्दील करवा के पसपा हुआ। उसने वजीराबाद गुजरांवाला पर भी कब्जा करने का ख्वाब देखा था, लेकिन चुंडा में पाकिस्तानी जवानों ने एक आर्म ब्रिगेड के साथ सैकड़ों टैंकों के हमले को नाकाम बना दिया। दर्जनों टैंक लड़ाई के पहले दिन बेहतरीन हालत में पाकिस्तान के हाथ लगे। उस इलाका में इंडिया पहले दिन के अलावा जंग के आखिर तक हमले करता रहा, लेकिन नाकाम रहा। जहां तक पाकिस्तानी नेवी का ताल्लुक है, तो उसने पहले ही अपनी जंग जीत ली थी। पाकिस्तानी अकलौती आबदोज गाजी ने बम्बई की बंदरगाह के पानियों में ऐसा खौफ पैदा किया कि भारतीय बैरिया आबदोज के खौफ से पूरे जंगी अरसा में अपनी पनागाह से बाहर ना निकली, क्योंकि पहले हमले ने ही उसके मुवासलाती ऑपरेशनल सलाहियत ख़त्म कर दी थी।